सोने ते और वायर बिन से बाप घनेरे बिन से बाप घनेरे सचिया बाप बिन से बाप।

0: अनेक कहे मत एक न माने हो, सिमृत शास्त्र वेद सब है, बहु भेद कहे हम एक न जाने हो। श्री असपाण कृपा तुमरी कर, मैं न कहे सब तो हे बखाने हो। दृढ़ निश्चय हजूर जी ने करवा देना कीता है, दुबिधा ना पड़ाओ, हर बिन होर ना पूजाओ, मड़े मसान ना जाई, हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो ना कोए जी, हर की सेवा ते मन हो चंदिया फल पाई है, दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी। मन नु समझाउंदे रहना मेरिया मना, कहा लुभाइया आन कहो, आन होरना दी देवी देवत्या दी उपासना विच लोभी हो करके क्यों लुभाए मान हो रहे हैं कि पदार्था वास्ते उन्हां नू पूज लईए। मेरिया मना क्यों तो अपने निश्चय नू डोला रहा है।
1: ईत ऊत प्रभ सदा सहाई,
0: मना याद रख देवियां ते देवते आप ही मुक्त नहीं, रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां ते हैं पर मुक्ति तिन्हां नू भी प्राप्त नहीं, लेखा तिन्हां नू भी देना पैंदा है। केवल ता केवल लेखे तो मुक्त करने वाला वाहिगुरु जी का नाम है। एवें सिख्या देंदे रहना है मेरिया मना। ईत ऊत प्रभ सदा सहाई, ईत इस लोक दे अंदर, ऊत पर लोक दे अंदर, ईहां ऊहां लोक पर लोक दे अंदर, ईत जेड़े समझदार ने, ऊत जेड़े समझदार नहीं, सबना नू रखण वाले परमेश्वर जी ने, सारिया दे सहाई लोक अते परलोक दे अंदर जेड़े परमेश्वर जी हन।
1: जीय संग तेरे काम कौ,
0: हे मेरिया मना, हे मेरे जीअड़े, अंत वेले ओहियो तेरे नाल जाणगे, तेरे काम कौ ते तेरे कारजां नू सवारन वास्ते समर्थ भी परमेश्वर जी ने। परमेश्वर जी तो बिना दूजा कोई कारज नहीं सवार सकदा। सतगुरु जी दे प्रतख वचने ने, थेर घर बैसहु हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे कार्ज सवारे, केवल ता केवल पूरे सतगुरु जी कार्ज सवार सकदे ने, कोई होर नहीं। इस करके मना, अंत समय जीए दे नाल जान वाले भी ते सारे कारजा नू सवारन वाले भी सर्व कला समर्थ प्रभु परमेश्वर जी ने, इस करके तिस दी ही बंदगी करनी कर। विश्राम दे करके सच्चे पातशाह जी फरमाउंदे हन,
1: अमृत नाम प्रिय प्रीत मनोहर।
0: हे गुरसिख प्यारे हो, जेड़े प्रिय प्यारे प्रीतम हरी अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने ना मनोहर मन नू हर लैण वाले ने, तिस दा जेड़ा नाम है वह अमृतमय है, मौत नू कट्टन वाला, अमर पदवी देण वाला, अमृत तुल मिठा, जिस दे रस दे बराबर कोई दुनिया दा रस नहीं पुजदा है जीओ।
1: है अघावन पान कौ,
0: पान नाम पीण दा है, जिन्हां ने पान कौ पान कर लिया, इस अमृत रस नू पी लिया। सतगुरु जी बचन करदे ने, यह है अघावन, ओ जीव इस लोक दे पदार्थां वल्लों रज गए ने, यह इस नाम रस दे करके अगावन परलोक दे पदार्थां वल्लों भी तृप्त हो गए ने। ना संसारिक भोगां दी इच्छा रही, ना स्वर्ग दे भोगां दी इच्छा रही, ना शरीर दे सुखां दी चाहत ते ना ब्रह्म लोक तक दे सुखां दे पदार्थां दी चाहत, वड्डा रस प्राप्त करके इन्हां निक्कियां चीज़ां दे निक्के सुख तो रहत हो गए ने। लोक परलोक दे पदार्थां वल्लों तृप्त हो रहे रज रहे हन जी। ओ
1: अकाल मूरत है साधु संतन की,
0: महाराज सच्चे पातशाह जी तिस परमेश्वर जी दे अंदर ध्यान नहीं जुड़दा। ध्यान किस जगह किस थां ते बैठ के टकाइए, कोई ऐसा थां होवे जिवें सनातन मत वाले कहिंदे जी घर छड के जंगलां च चले जाइए, फिर कहिंदे जी जदों 75 तो उपर उमर हो जावे फिर जंगल छड के तीर्थां दे कंढिया ते चले जाइए, जोगी सिद्ध कहिंदे ने गुफावां विच बैठ जाइए, पहाड़ां ते बैठ के मन टकाइए। महाराज ओ केड़ी श्रेष्ठ थां है जिथे बैठिए ते साडा ध्यान जुड़ जावे। हजूर फरमावना करदे हन, अकाल मूरत है साध संतन की। भाई जेड़े श्रेष्ठ साधु जन ने, जेड़े श्रेष्ठ संत जन ने, ध्यान टिकाउण वास्ते उन्हां दी श्रेष्ठ जगह है अकाल पुरख वाहिगुरु जीआं दा सरूप। अकाल जो मौत रहत, मौत तो रहत हस्ती है, मूर्त कहिए स्वरूप, जेड़ा स्वरूप मौत तो रहत है, जेड़ी हस्ती मौत तो रहत है।
1: ठाहर नीकी ध्यान का,
0: ते जेड़े संत जन वाहिगुरु जी दे नाल जुड़े ने, जेड़े साध जन वाहिगुरु जी दे नाल जुड़े ने, उन्हां दी सत संगत करदिया होया वाहिगुरु जी दे नाम विच ध्यान लाउणा करिए। भाई ये साध संगत, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਠਾਹਰ ਹੈ, ਇਹ ਠਾਹਰ ਨੇਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਥਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਿਕਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਚੰਗਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਇੱਛਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ, ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਮਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਨਾਮ ਰੰਗਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮਨ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਸਾਧੂ ਜਨ

0: साध संगत भज के वलना
1: कुटानकुट शुक्रम सतगुरु जी आप जी ने तरस किया सतगुरु जी अपने बच्चों पासो कीर्त दी हाजिर प्रवाही सतगुरु जी आप जी शुक्राना सतगुरु संतावन शब्द भेट माया वजो माया हाजिर करते ने पातशाह जी संतां दे खजाने भरपूर तने दी भावना करके आप जी दर ते सेवा कीते ने पातशाह जी सो मनोकामना भावनावां इच्छावां पूर्ण करन सतगुरु जीओ सेवा लिखे चलाना सतगुरु जी नाम बाणी की दात बख्शिश करके नवाजना सतगुरु जीओ माया विच बरकतां।

भूत बन चार छित छो न सब दूजा धारी पौन के हारि सो भुजंग जानियत है। त्रिण के फचैया धन लोभ के तजैया ते तो कौन के जैया वृक भैया मानियत है। नभ के उडैया ताहे पंछ की बडैया दे दबा गुलाब डाल वृक ध्यान ठानियत है। जेते बड ज्ञानी तेनो जानी पवखानी नाहे असन प्रपंच मन भूल अनियत है। भूम के बसैया ताहे भूचरी के जैया कहे नभ के उडैया सोच रैया के बखानी है। फल के भजैया ताहे बांदरी के जैया कहे आदिश फिरैया ते तो भूत के पछानी है। जल के तरह यक गंगी ऋषि का हत जग आग के फचैया सोचा कोर सम मानी है। सूरज सिवैया ताहे कौल की बढ़ाई दे चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है। नारायण कछ मछ तिंदुआ कहत सब कौल नाभ कौल जेह ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सब थे नचारी ऋखि के सनाम के महंत लहियत है। माधव भवर ओ अटेर को कन्हैया नाम कंस को बधैया जम दूत कहियत है। मूड रूट पीटत न गूढ़ता को भेद पावे पूजत न ताहे जाके राखे रहियत है। विश्वपाल जगतकाल दीन दयाल वैरी साल सदा व्रत पाल जम जाल ते रहत है। जोगी जटा थारी सत्य सचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह पे सहत है।

अनाथ था बना अनेक तन घायल सहत है। जाप के कियत जो पिपायत जाप देव बोधना सदीव तुही उचरत है। नाभ के उड़त जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश पंछी डोल बो करत है। आग में जरत कतराण की परत कर पताल के बास।

कुरान हुई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाओ है। जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यार न्यार हो के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है दूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नदी ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते कछ मछ केते उनको करत फच केते अच वच हो सपच उड़ जाएंगे। केते नव बीज अच पच को करेंगे फच केते को प्रत अच हो बचाए खाए जाएंगे।

तेज में अतेज जैसे तेज ऋण ताहि ते उपज सब ताहि में समाहिंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग पास कित मदीना बक्का निवासी कित उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दुख को भरत है। गैन में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी। घास हारे चंदन लगाए हारे जो हजार बोझ हारे वाहन चढ़ाए हारे लापसी। गा हारे गोरन मनाए हारे मटी मटली बहारे भीतन लगाए हारे छापसी। गाए हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब बज हारे पंडित तपंत हारे तापसी।

नहीं जान जाई कछु रूप रेखं कहा वासता को फिरे कौन फेखं कहा नामता को कहा कह कहा वे कहा कह बखानो कहे मैं ना आवे न रोगं न सोगं न मोहं न मातं न कर्मं न

नेह गृह कहूँ देह दुख कहूँ औखति रोग के शोक सुख कहूँ देव विद्या कहूँ दैद बान कहूँ जक्ष गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी सात की तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूम की भुगत मैं परम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जक्ष विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ श्रेष्ठ की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम वाणी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अत्र सारं कहूँ वत्र रूपं कहूँ मत्र वाणी कहूँ छुत्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टाचार चित्रं स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध शेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राज साजं कहूँ राजरीतं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ वरम प्रीतं कहूँ आरबी तोर की पारसी हो कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूँ देश बाख्या कहूँ देव बाने कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या

न रेख रुखं जे ताप न साप न सोक सुखं जे रोग न सोक न भोग भुयं जे खेद न भेद न छेद छयं जे जात न पात न मात पितं जे चृचियं छत्री छत्र छितं जे राग न रेख न रोग भणं जे द्वैख न ताक न दुख गणं जहे अंडह ते ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नव खंड सचियो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंधु बिंद न गिंद न गंग श्रे जछ गंधर्व फणिंद भुजंग रच देव देव भेव नरंग नरपान त्रिपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उत भुजंगी ये देव देव सराध पितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जय तात न मात न ब्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुअंग जय जंप किन्नर जछ जुअंग नर नारण पुंसक जाह किए गण किन्नर जछ भुजंग दिए गज बाज रथा दिग पांद गणंग भवभूत भविख भवान तुअंग जय अंडज सेतज जेर रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो

अनधूत अभूत अछूत मतंगन गाद अभ्याद अनाथ गतंगन खेद अभेद छेक नरंग देह चार चतुर्द चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुखंग जय श्रोक न भोग न जोग जुगंग भुव भंजन गंजन आदि तरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज वृतंग जय पार न पावत पूर मतंग।

चित्त कृपा निध को जब है त्यो या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है। एक नाम बिना नहीं कोट प्रति इम वेद उचारत सार सुती जो वारस के जस के रस है त्यो भूल न का।

न सीत है न सोच है न घ्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र है न छिद्र के विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न द्वैख है न भेक है न दुई है न द्रोह है न काल है न बाल है सदैव दयाल रूप।

जस किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्ग अपार, नेत नेत पुकार ही शिव सकर ओमुख चार। सर्व सबत बतार के

हर हर कहियो सभु मेरा नाम नाम तुरंत। वेद भेद न पायो लखियो न सेवक तेव, देव दानो मूड मानो जशन जाने जेब। भूत भाप भवान।

कवन सृष्ट को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा। कहाँ कर्म को कर्म है कहाँ भ्रम को नाश, कहाँ जितन की चेष्टा कहाँ जित प्रकाश दोहरा।

चंडासुर चंडन मुंड में मुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंगन धुजा फरंगण फणी फुंकारण जोध जिते सरधार विवरखंड दुष्ट प्रकरखंड पुष्ट प्रहरखंड दुष्ट मथे जय जय हो सी मैघासुर मर्दन भूमा कासल ऊर्ध्व अथे दामनी प्रहासन सुछम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आचन युद्ध प्रमाचन हृदय।

दुष्ट प्रजारण सृष्ट उबारण शोध मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण सस बहारण साध मते सहति सन्नाहन आश प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुरंग जय जय हो सीमा घासुर मर्दन भूमाकाश पताल जलंग चाचर चमकारण चुर हारण धूम धुंकारण दाप मथे दाढ़ विव्रतंते जोग जयते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य प्रत्येजन अष्टभुजे जय जय हो सीमा घासुर मर्दन भरम विनाशन धर्म तुझे गुंगुरु गमंकण सहस्रजमंकण फणियर फंकारण धरम धुजे अष्टाड प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दोष प्रणासन चक्रगते केसरी प्रवाहे सुध सन्नाहे अगमथाहे एक वृते जय जय हो सीमा खासुर मर्दन आद कुमार गाथ वृते सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भिष्ट विनाशन वृद्ध मथे कावरू

तेज प्रकर खंड धुंद तबे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अकाद अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तब तपतापन जपत जीवे जय जय होशी शास्त्र प्रकरखण आद अनिल अकाद अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी धुंद तुरंग।

घंट का विराजे रुंझुन बाजे ब्रह्म बाजे सुन सुरंग को किल सुन लाजे किल बिक भाजे सुखूब राजे मध उरंग दुर्जन दल दज मंथन रिज सब न भज रूह रणन जय जय उसी माखा सुर मर्दन चंड चक्र धन आद गुरंग चाचरी प्रचोधन दुष्ट विरोधन रोष रोधन क्रूर विते धूमराज विधुन सुरन प्रजुन संजय विधुन

दामनी प्रकाश है उन्तरना से ज्योत प्रकाश है अतुल बले दान वीर प्रकरखण सर्वर वरखण दुष्ट प्रतरखण पितल तले अष्टायत वाहन बोल निवाहन संत बनाहन गूढ़ गते जय जय उसे मासुर मर्दन आद अनाद अकाद प्रते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत व्रत

नहीं भेद भ्रम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप विचल पार जानी न जाए जय रूप रेख कहे।

और की बात कहा कह तो सौ सौ पेट ही के बड़ बीज बचावे। जाछ भुजंग सुदान देवा भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे। भूम आकाश पताल रसातल जाछ भुजंग सफे सरण्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभा हूँ को नेत ही नेत वेद बतावे। खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से जदुरानन से रुम नारिक से सब हूँ मिल गायो। वेद कतेव न वेद लखियो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमावत से दसनाद सनंतन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन मैं जह को अमितूज सब जग छायो। भेद पुराण कतेव कुराना भे नृपान सभ बचहारे। भेद न पाए सक्यो अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग।

अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धारियो के छलैया महासत्रण के साल है। दान के देवैया महामान के बढ़िया वसान के देवैया कटैया जम जाल है। जोध के जतैया और विरोध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पाव हिंगुला हिमालय ध्यावे गोर गर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जो की जोग साधे पौन साधना की देख बांधे अरब के अरबी आराध तेरे नाम है। फोरा के फिरंगी माने कंधारी गुरे सी जाने पश्चिम के पश्चिमी पछाने निज काम है। मर टाम गेले तेरी मन सो तपस्या करे देड़ वे तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिर अंगावारी दिल्ली के दलवाली तेरी आगे में चलत है। रोह के रोहेले मांग देश के मंगेले वीर बंग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चिन्म

को महेश गंग धान को अभेष कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और गाहु पैन दीन साध दीन कहियत है। पाइये न पातेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हद की पुकार पल पाछे पहुँचत ताहे चिट की जंघार पहले ही सुनियत है। किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुखचार किते कृष्णा अवतार किते राम कहियत है। किते ससरासी किते सूरज प्रकाश किते मुंडिया उदासी जुग द्वार दहियत है। किते महादीन किते व्यास प्रवीण किते कुमेर कुलीन किते जच कहियत है। करते है विचार बिना पूर्ण को पावे बार ताहि ते अपार निराधार लहियत है। पूरन अवतार निराधार है न पार वार पाई न पार पे अपार के बखानी है। अद्व अविनाशी परम पूरन प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी के मानी है। जंत्र हूँ न जात जा की बाप हूँ न माया ताकि पूरन प्रभा की सुछटा के अन मानिए। तेज हूँ को तंत्र है कि राजसी को जंत्र है कि मोहनी को मंत्र है निजंत्र के जानी है। तेज हूँ कुतर है के राज सी को सर है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है। कामना की खान है के साधना किसान है। विरक्त

ज्ञान को दाता है, गनी मन को गारक है, साधन को रचक है, गुण को पहार है, सिद्ध को स्वरूप है, के बुद्ध को विभूत है, के क्रुद्ध को अभूत है, के अजय विनाशी है, काम को कुनिंदा है, के खूबी को दिहंदा है, गनी मन गरिंदा है, के तेज को प्रकाशी है, काल हूँ के काल है, के शत्रुन के साल है, के मित्रन को भोगत है, के वृद्धता की बासी है, जो हूँ को जंत्र है, के तेज हूँ को तंत्र है, के मुंह होने को मंत्र है, के पूर्ण प्रकाशी है, रूप को निवास है, के बुद्ध को प्रकाश है, के सिद्धता को बास है, के बुद्ध हूँ का घर है, देवन को देव है, निरंजन अभेव है, अदेवन को देव है, के शुद्धता को सर है, जान को बचैया है, मान को देवैया है, जमजाल को कटैया है, के कामना को कर है, तेज को प्रचंड है, अखंडन को खंड है, महीपन को मंड है, के स्त्रहन नर है, विश्व को भरण है, के आपदा को हरण है, के सुख को करण है, के तेज को प्रकाश है, पाई न पार पार वार हूं को पार, जाको की जत विचार सो विचार को निवास है, हिंगुला हिमालिका वह बसी हल विद्या वे पूर्व बिना पार पावे असत्य नाश है, देवन को देव महादेव हूं के देव है, निरंजन अभेव न दया द्वय अविनाशी है, अंजन विहीन है, निरंजन प्रवीण है, के सेवक अधीन है, कटैया जम जाल के, देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ, भूम के भुजैया है, मुहैया महाबाल के, राजन के राजा महासाज हूं के साजा महा, जोग हूं को जोग है, धरैया द्रुम छाल के, कामना के गर है, के बुद्धता को हर है, के सिद्धता के साथी है, के काल है कुचाल के, छीर के छीरावत छाछ के सी छत्रा नेर छपा कर के सी छब कल इंद्र के कूल के, हंसनी से सिंह रूम हीरा सी हुसन आबाद, गंगा के सिधार चली सातो सिंध रूल के, पारसी पलाऊ गण रूपा के सी रामपुर, सूरासी सुरंगाबाद नी के रही झूल के, जम्पासी चंद्री गोड चांदनी सी चांदागढ़, कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के, फटक सी कैलास कमाऊ गढ़ कांसीपुर, सीसा सी सुरंगाबाद नी के सोहियत है, हिमा सी हिमल हर हार सी हल पानेर, हंस के सी हाजीपुर देखे मोहियत है, चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगिर, चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है, गंगा सम गंग धार बकान सी बिलंदाबाद, कीरत तिहार की उजियारी सोहियत है, फरासी फिरंगी फरासी के दुरंगी, मकरान के वृदंगी तेरे गीत गाहियत है, भकरी गंधारी गोर गाखरी गुरद जाचारी, पौन के हारी तेरो नाम ध्यायत है, पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर मैं विराज, जहां जहां जाइयत है, पूरण प्रताप जंत्र मंत्र तेता विनाथ की।

सोई थी सी जो तू दहे सोई हां पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी दयाया जिसनू कृपा करह तन नाम रतन पाया गुरमुख लाधा मनमुख गवाया तद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी।

सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास नवरी है, पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जू करी यहो रक्षा, राख ले हो मह राखन हारे, साहिब संत सुहाए प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा पप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विषण प्रकाशा।

भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्भुज खान बहर रच दीनी काहू फूल राजा हुए बैठा काहू सिमट भयो संकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आ जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उवार असिख संघरो दुष्ट जिते उठव तुत पाता सकल मलेच करो रण घाता जे अस दुजताउ शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुहे मरे पुरख जवन पग परे तहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताकि काल निकट नह है रक्षा होए ताहीं सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत

बचन कहा सिर न्याय। पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा। जे जे तुमरे ध्यान को नितड़ ध्यान है संत, अंत लेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा। तिन बिदियन की कुल बिखे प्रगटे नानक राय। सबसे

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भक्त नेत स्वर्ग बास स्वर्ग बर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो है कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल होई आद ब्या छुए सकै न कोई सम सत्रह सहस पचावन हाड़ वदी प्रथम सुख दावन तौ प्रसाद कर

थरे नहीं आनियो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मानियो। सिमृत शास्त्र भेद सब बहु भेद कह हम एक न जानियो। श्री अस पान कृपा तुम री कर मैं ना कहूँ।